उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चारपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिरे जाते हो।

तो तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो, कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला, देखो यही सरीह नुकसान है।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: ईमान।
1: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
4: हमसे

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
4: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan. This is FM 101.
5: وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ.
6: ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बे फॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान। निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून।

0: सुबह स्थान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है जो आज से नाफिजुल अमल है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू में पाकिस्तान के अमन कोशिशों के लिए इनकी मुस्तकिल हिमायत पर दिली शुक्रिया अदा किया है। मारूफ पाकिस्तानी मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ख्वातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज साउथहैम्पटन में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बे फॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत ने अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, जो आज से नाफिजुल अमल हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू में पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए इनकी मुस्तकिल हिमायत पर दिली शुक्रिया अदा किया है। मारूफ पाकिस्तानी मिजाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की 8वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज साउथहैम्पटन में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
2: हमसे है रोशन ये जहां।

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
3: This is FM 101.
4: ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों में मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। नायब वज़ीर आज़म और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया है। हुकूमत ने अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, जो आज से नाफिजुल अमल हैं। आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के एक मैच में अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा दिया।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: be back after this short commercial break.
1: 101.
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: This is FM 101.
5: ये है FM 101 आपकी समातों के संग आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात

0: وصلى الله على نور.
1: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशे.

0: This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 news headlines. News headlines.
2: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने हर बेघर और बेवतन फर्द के महफूज मुस्तकबिल के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका अज़्म की जरूरत पर जोर दिया है। नायब वजीर आजम काहिरा रवाना हो गए हैं, जहां वो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के R4 वज़ीरे खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीरे खजाना ने कहा है कि आइंदा माली साल के विफाकी बजट का मकसद बरामदात पर मबनी पायदार और जामे इक्तसादी तरक्की का हुसूल है। बन्नू में आज एक मुसाफिर गाड़ी बारूदी मवाद से टकराने से 7 अफराद शहीद हो गए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात के हवाले से सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। और आज साउथहैम्पटन में ख्वातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा।
3: ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

0: फिर सोचो कि उस वक्त ये क्या करेंगे जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और इन लोगों पर तुम्हें गवाह की हैसियत से खड़ा करेंगे। मदीना मुनव्वरा में सला पहाड़ के गर्बी हिस्से पर मस्जिद फतह वाक़ है। इसके जुनूब में भी चंद मसाजिद हैं। इन सबको मसाजिद फतह कहते हैं। मस्जिद फतह को मस्जिद एहजाब और मस्जिद आला भी कहा जाता है। इस मस्जिद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं की थीं, उनकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह से हमकनार किया था, इसीलिए इसे मस्जिद फतह कहा जाता है। 5 हिजरी का वाकया है कि तमाम अरब कबाइल ने इज्तमाई तौर पर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने का मंसूबा बनाया और 10,000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। जब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो आप अपने तहफ्फुज़ और दिफा के लिए 8 ज़िलक़ादा को 3,000 सहाबा किराम को साथ लेकर निकल खड़े हुए। मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ में नखलिस्तान का सिलसिला कुदरती तौर पर शहर पनाह का काम देता था और सिर्फ शिमाली सिमत खाली थी। चुनाचे आपने इसी इलाके में तकरीबन 3 मील लंबी खंदक सिर्फ 20 दिन में तैयार कराई। 1 माह तक कुफार ने मुहासरा किया और जब मुसलमानों पर शिद्दत की इंतहा हो गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातर 3 दिन मस्जिद फतह में निहायत आजजी और इनकिसारी से दुआ फरमाते रहे कि परवरदिगार अहजाब को शिकस्त फाश देकर मुसलमानों को फतह नुसरत अता फरमा। पीर मंगल और बुध 3 दिन तक दुआ का यह सिलसिला जारी रहा। 3रे दिन जोहर और असर के दरमियान मुजीबुद्दावात ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजा। आप खुश खुश सहाबाए किराम के पास तशरीफ लाए और फतह की खुशखबरी सुनाई। लड़ाई का यह दिन इस कदर संगीन था कि कुफार हर जानिब से पत्थरों और तीरों की बारिश कर रहे थे। इस शदीद हमले के बाइस हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम दिन भर इस तरह मसरूफ जिहाद रहे कि नमाज के लिए लम्हा भर की मोहलत मयसर ना आ सकी और 4 नमाजें कजा हो गईं। इन तमाम नमाजों को इशा के वक्त अदा किया गया। मस्जिद फतह में दाखिल होने के लिए शिमाल और मशरक की तरफ 2 ज़ीने बने हुए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब इस मस्जिद की तजदीद करवाई तो इसके अंदर 3 सुतून बनवाए थे। इनके दरमियान वाले सुतून की जगह हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। ये मस्जिद उस वक्त बरामदा नुमा थी। 3 सुतूनों पर बगैर दीवारों के छत थी। बाद में 1179 में इसकी तजदीद कराई गई। इसका तूल शिमालन जुनूबन 20 ज़रा यानी 30 फिट और अरज शर्कन गर्बन 17 ज़रा यानी 25.5 फिट था। मस्जिद फतह की फजाओं में अदा किए गए अल्फाज समाअत फरमाइए।
1: ये सला पहाड़ के गर्बी हिस्से पर है। 5 हिजरी में जब 10,000 कुफार ने मुसलमानों पर हमला करने का इरादा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़िलक़ाद को 3,000 सहाबा इकराम की मैयत में शिमाली इलाके में तकरीबन 3 मील लंबी खंदक 20 दिनों में मुकम्मल फरमाई। ये हजरत सलमान फारसी की तजवीज पर खंदक खोदी गई थी। 1 माह तक ये मुआसरा कायम रहा और जब मुसलमानों पर शिद्दत की इंतहा हो गई तो ताजदार मदीना शाह हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातर 3 दिन तक इसी मस्जिद फतह में निहायत आजजी और इनकिसारी से दुआ फरमाते रहे।
0: मस्जिद फतह बुलंदी पर है। नीचे मैदान में 5 मसाजिद हैं। जंग खंदक में सहाबाए किराम जिन जगहों पर पहरा दे रहे थे वहीं नमाज अदा करते थे। चुनाचे वहां यादगार के तौर पर मसाजिद तामीर करवा दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त कुबा में क्याम के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए तो वो जुमे का दिन था। आपकी रवानगी सूरज काफी बुलंद हो जाने पर हुई थी। जब आप कबीला बनू सालम में वादिय रानूना तक पहुंचे तो नमाज जुमा का वक्त हो चुका था। आपके साथ उस वक्त 100 अफराद थे। आपने वही नमाज जुमा अदा फरमाई।

0: This is FM 101.
1: ये है FM 101, आपकी समातों के संग। आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात।

ऐ हुस्न हकीकी नूर अजल तन वाजिब ते इमकान कहूं तन खालिक ज़ात कदीम कहूं तन हादिस खल्क जहान कहूं।

0: AE Power, the ultimate power solution. 101 FM.
1: Avail flat 30% and 50% off at the Diner's Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: This is FM 101.
3: وصلى الله على نور.
4: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
0: KE Power, the ultimate power solution.
3: 101 FM.
4: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: This is FM 101.
6: وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ
7: یہ ہے FM 101, آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشست۔

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101, आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: This is FM
1: 101 time check. It's 6:30 p.m.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
4: 101 FM.
3: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
0: This is FM
5: 101.
6: Yeh hai FM.
7: Sunte rahiye FM 101.
8: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
7: सुनते रहिए FM 101.

0: उगल रहे थे, वहां इस शहर को दुनिया भर की दायमी मलामत से बचाने के लिए कुछ ऐसे लोग भी थे जो इब्न ज़ियाद की तलवार और कैद खानों से खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे, और अब इंतहाई जबरदस्त जासूसी निज़ाम और हर गली और हर मोहल्ले पर पहरे के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, ताकि इमाम हुसैन के साथ जान देकर उस जिम्मेदारी को पूरा करें जो एक तरफ तो एक कलमा गो की हैसियत से उन पर आयद होती थी और दूसरी तरफ इमाम हुसैन को खत लिखकर कूफा आने की दावत देने की वजह से लाजिम हो गई थी। ऐसे जानिसार हजार जत्नों से करबला पहुंचे। कुछ तो इमाम हुसैन के सफर के दौरान आपके काफिले से आकर मिलते गए, जैसे उमर बिन खालिद अल असदी, साद गुलाम उमर इबन खालिद, मजमा बिन अब्दुल्ला, आयज बिन मजमा, जनादा इबन हारिस सलमानी, जंदब बिन हजीर किंदी और यजीद बिन ज़ियाद किंदी वगैरह। कुछ वो थे जो कूफे से इबन ज़ियाद की फौज में शामिल होकर निकले, क्योंकि दूसरी कोई और सूरत करबला तक पहुंचने की नहीं थी, और करबला पहुंचकर कुव्वत और हुकूमत को ठुकरा कर हक व सदाकत के लश्कर में शामिल हो गए। ऐसे लोगों में जाबिर बिन हिजाज तीमी, हारिस बिन उमराउल कैस किंदी, हलास बिन उमरु अजदी और जुहैर बिन सलीम अजदी जैसी शख्सियतें शामिल हैं। कूफे के जानिसारों के इस गरोह में सबसे ज्यादा नुमाया जमात उन लोगों की थी जिन्होंने न रास्ते में चींटी की तरह फैली हुई दुश्मन फौज की परवाह की, न इब्ने ज़ियाद के इताब से खौफजदा हुए, बल्कि जिस तरह भी हुआ छिपकर लड़ भिड़ कर किसी न किसी तरह करबला पहुंच गए। इन फिदाकारों में हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, अब्दुल्ला बिन अमीर कलबी और उमैया बिन साद बिन ज़ैद ताई सरे फेरिस्त। हजारों के मुकाबले में आने वाले इन अफराद की तादाद बज़ाहिर नाकाबिले बयान हद तक कम है, लेकिन हुसैनी फौज के लिए ये फर्द कितने अहम थे इसका अंदाज़ा इस बात से होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 72 शोहदा की जमात में कमोबेश 40 शहीद कूफा से जान कुर्बान करने आए थे, और इन मददगारों ने उस वक्त तक बनी हाशिम या इमाम हुसैन के हिजाजी हमराहियों पर आँच नहीं आने दी जब तक कि उनकी अपनी जान कुर्बान न हो गई। चौथी मुहर्रम के वाकयात का जिक्र अधूरा रहेगा अगर इस बात का जिक्र न कर दिया जाए कि आज ही उमर इब्न साद ने इमाम हुसैन से मुतालबा किया कि वो अपने खेमे दरियाए फुरात के किनारे से हटाकर इतने पीछे चले जाएं कि दरिया तक आपकी रसाई मुमकिन न रहे। अरब के सहराओं में पानी से दूरी मौत को गले लगाने के मुतरादिफ थी, लेकिन बुलंद मकासिद के लिए जिंदा रहने और जान दे देने वाले हुसैन के लिए यह मरहला कोई दुश्वार मरहला न था। आपके हमराहियों को यकीनन अपने जज्बात पर काबू पाने में शदीद दुश्वारी हुई होगी, लेकिन हुसैन ने हुसूल अमन के इस मौके को भी हाथ से जाने न दिया और दुश्मन की ख्वाहिश के मुताबिक अपने खैमे दरिया के किनारे से उठा लिए। 101 FM। तीन मुहर्रम तक करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग के लिए 5,000 का लश्कर उमर इब्न साद की सरकर्दगी में जमा हो चुका था। बज़ाहिर ये तादाद इमाम की बेसर सामानी के मुकाबले में बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये अली के फर्जंद की शुजात का रोब था या इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन को अपनी कुव्वत से खौफजदा करना चाहता था कि 72 अफराद की जमात के लिए 5,000 का लश्कर नाकाफी समझा गया, और फौरी तौर पर कादसिया में मुकीम कोतवाल कूफा हसीन बिन तमीम की सरकर्दगी में रास्ते की नाकाबंदी पर तैनात 4,000 अफराद के लश्कर को हिदायत की गई कि वो भी करबला पहुंचकर उमर इब्न साद के लश्कर में शामिल हो जाए। चूंकि ये लश्कर करबला से ज्यादा दूर नहीं था और पहले ही हालत सफर में था, इसलिए उसे करबला तक पहुंचने में देर नहीं लगी और 4 मुहर्रम को यह लश्कर भी इमाम के मुकाबिल सफारा हो गया। उधर इब्न ज़ियाद ने कूफा में आम भर्ती का ऐलान कर दिया और खुद शहर कूफा से बाहर निकलकर नखीला के मुकाम पर, जो कूफा और करबला के दरमियान वाक़ है, खैमाजन हो गया और कूफे से तैयार होकर आने वाले फौजी दस्तों को मुख्तलिफ सरदारों की सरबराही में इंतहाई तेजी से करबला की तरफ भेजने लगा। और इस तरह यजीद बिन रकाब कलबी के हमरा 2,000, मसायर बिन मजीना माजनी के साथ 3,000, शीस बिन रबी के हमरा 1,000, हिजार बिन अबहर के साथ 1,000, उमरु बिन अल-हज्जाज के साथ 2,000 के लश्कर यके बाद दीगरे करबला पहुंचने लगे, और देखते ही देखते करबला में कम से कम 30,000 फौज का इज्तिमा हो गया। एक तरफ जहां शहर कूफा के गली कूचे कत्ले हुसैन के एहतमाम के लिए दरो दीवार से आदमी उगल रहे थे, वहां इस शहर को दुनिया भर की दायमी मलामत से बचाने के लिए कुछ ऐसे लोग भी थे जो इब्न ज़ियाद की तलवार और कैद खानों से खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे, और अब इंतहाई जबरदस्त जासूसी निज़ाम اور ہر گلی اور ہر محلے پر پہرے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ امام حسین کے ساتھ جان دے کر اس ذمہ داری کو پورا کریں جو ایک طرف تو ایک کلمہ گو کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھی، اور دوسری طرف امام حسین کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی۔ ایسے جانصار ہزار جتنوں سے کربلا پہنچے، کچھ تو امام حسین کے سفر کے دوران آپ کے قافلے سے آ کر ملتے گئے، جیسے عمر بن خالد الاسدی، سعد غلام عمر ابن خالد، مجمع بن عبداللہ، عائز بن مجمع، جنادہ ابن حارث سلمانی، جندب بن حجیر کندی اور یزید بن زیاد کندی وغیرہ۔ کچھ وہ تھے جو کوفے سے ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو کر نکلے، کیونکہ دوسری کوئی اور صورت کربلا تک پہنچنے کی نہیں تھی، اور کربلا پہنچ کر قوت اور حکومت کو ٹھکرا کر حق و صداقت کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں جابر بن حجاج تیمی، حارث بن امراء القیس کندی، حلاس بن امرو ازدی اور زہیر بن سلیم ازدی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ کوفے کے جانصاروں کے اس گروہ میں سب سے زیادہ نمایاں جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نہ راستے میں چونٹی کی طرح پھیلی ہوئی دشمن فوج کی پرواہ کی، نہ ابن زیاد کے اعتاب سے خوفزدہ ہوئے، بلکہ جس طرح بھی ہوا چھپ کر لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح کربلا پہنچ گئے۔ ان فداکاروں میں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عبداللہ بن امیر کلبی اور امیہ بن سعد بن زید تائی سر فہرست ہیں۔ ہزاروں کے مقابلے میں آنے والے ان افراد کی تعداد بظاہر ناقابل بیان حد تک کم ہے، لیکن حسینی فوج کے لیے یہ فرد کتنے اہم تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی 72 شہدا کی جماعت میں کم و بیش 40 شہید کوفہ سے جان قربان کرنے آئے تھے، اور ان مددگاروں نے اس وقت تک بنی ہاشم یا امام حسین کے حجازی ہمراہیوں پر آنچ نہیں آنے دی جب تک کہ ان کی اپنی جان قربان نہ ہو گئی۔ چوتھی محرم کے واقعات کا ذکر ادھورا رہے گا اگر اس بات کا ذکر نہ کر دیا جائے کہ آج ہی عمر ابن سعد نے امام حسین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خیمے دریائے فرات کے کنارے سے ہٹا کر اتنے پیچھے چلے جائیں کہ دریا تک آپ کی رسائی ممکن نہ رہے۔ عرب کے صحراؤں میں پانی سے دوری موت کو گلے لگانے کے مترادف تھی، لیکن بلند مقاصد کے لیے زندہ رہنے اور جان دے دینے والے حسین کے لیے یہ مرحلہ کوئی دشوار مرحلہ نہ تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو یقیناً اپنے جذبات پر قابو پانے میں شدید دشواری ہوئی ہوگی، لیکن حسین نے حصول امن کے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا اور دشمن کی خواہش کے مطابق اپنے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لیے۔
1: یہ ہے ایف ایم 101 آپ کی سماعتوں کے سنگ، آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 7 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म 4 इलाकाई ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने आज कौमी असेंबली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा कि बजट का मकसद पायदार इक्तिसादी तरक्की का हुसूल है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की आड़ में सैकड़ों इजाफी फौजियों की तैनाती ने आवाम की मुश्किल में मजीद इजाफा कर दिया है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच साउथैम्पटन में जारी है।
2: This is FM 101.
3: Hey, we'll be back after this short commercial break.
4: Avail flat 30% and 50% off.
5: सुनते रहिए FM 101।
6: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
7: हमसे है रोशन ये जहां,
8: हमसे है

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: शुक्रिया, आपने FM 101
4: ट्यून किया। At the Diners Father's Day Sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
5: This is FM 101.
4: Avail flat 30% and 50% off at the Diners Father's Day Sale till 21st June. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: Unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the text. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. This station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101. FM.

0: da.
1: 101 FM.
0: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: This is FM 101.
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को तशरीफ लाए। 3 मुहर्रम को उमर इब्न साद यजीदी फौज के सिपहसालार की हैसियत से करबला पहुंच गया। 4 मुहर्रम को मजीद सरदारों के साथ फौजी दस्ते पहुंचने लगे और देखते ही देखते करबला का रेगिस्तान एक फौजी छावनी में तब्दील हो गया। यजीदी फौज मादी एतबार से हर तरह मुसल्ला थी। जवानों की कसरत, असलाह की फरावानी, सामान रसद की मौजूदगी, गरज इस फौज के पास हर वो चीज मौजूद थी जो किसी बड़ी जंग को जीतने के लिए दरकार होती है। दूसरी तरफ मुकाबले में वो जमात थी जो किसी भी तरह एक फौज नहीं कही जा सकती थी। गिनती के चंद लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे, हर किस्म की कुमक से महरूम, चारों तरफ से दुश्मन में घिरे हुए थे। जंग के मादी पैमानों के एतबार से हुसैन इब्न अली के पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी सच्चाई पर यकीन कामिल के और हक के लिए जान कुर्बान कर देने के जज्बे के। दूसरी तरफ हर चीज थी, लेकिन इस हर चीज में जमीर की वो कसक भी शामिल थी जो एहसास जुर्म का लाजमी नतीजा होती है। उमर इब्न साद रे की सल्तनत की लालच में करबला तक तो आ गया था, लेकिन इसमें इतनी जुरत नहीं थी कि वह हुसैन इब्न अली से यजीद की बैत का मुतालबा करता। और यह तो और ज्यादा मुश्किल काम था कि हुसैन की बेगुनाही का पूरी तरह इल्म भी हो, उनके किरदार की अजमत से वाकफियत भी हो, उनके मकाम और मनसब से आगाही भी हो, और फिर उनके खिलाफ एलाने जंग कर दिया जाए। इस मकाम तक पहुंचने के लिए अभी उमर इब्न साद को अपने दिल की स्याही में और ज्यादा इजाफे की जरूरत थी। जंग से बचने के लिए या फिर जंग का बहाना तलाश करने के लिए उमर इब्न साद ने इमाम हुसैन से मुजाकरात का सिलसिला शुरू करना चाहा। चुनांचे फौज के एक सरदार अजरा बिन कैस अहमसी को बुलाकर उसे इमाम की खिदमत में यह पूछने के लिए भेजना चाहा कि आप यहां क्यों तशरीफ लाए। लेकिन अजरा में इतनी अखलाकी जुरत नहीं थी कि इमाम का सामना कर पाता। उसने सिफारत का ओहदा कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। यही सूरत हाल कुछ और लोगों से पेश आई। आखिर एक दुरुस्त खू और सख्त मिजाज शख्स कसीर बिन अब्दुल्ला शाबी आगे बढ़ा कि हुसैन से बात करने मैं जाऊंगा, और अगर मुझे हुसैन को कत्ल करने के लिए कहा जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यूं गुस्ताखाना कलमात कहता हुआ कसीर जब खयाम हुसैनी की तरफ आया तो इमाम के साथियों में से एक जानिसार अबू समामा एसाइदी ने आगे बढ़कर कसीर को रोका। कसीर ने जब इमाम हुसैन के पास जाने का मुतालबा किया तो अबू समामा ने शर्त आयद कर दी कि कसीर इमाम की खिदमत में जाने से पहले अपने हथियार उतार कर बाहर रख जाए। कसीर ने हथियार खोलने से इनकार किया तो अबू समामा ने तजवीज पेश की कि उसकी तलवार के कब्जे पर अबू समामा हाथ रख कर चलेंगे, लेकिन कसीर बिन अब्दुल्ला ने यह शर्त भी मानने से इनकार कर दिया। चुनांचे कसीर इमाम से मुलाकात किए बगैर वापस आ गया। अब उमर इब्न साद ने कबीला हंजला के एक शख्स करा बिन कैस तैमी को रवाना किया। करा जब हुसैन इब्न अली के खेमों के करीब आया तो हजरत हबीब इब्न मजाहिर ने उसे पहचान लिया और इमाम से मुखातिब होकर कहा कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, यह एक समझदार आदमी है और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यह आपसे जंग के लिए मुखालिफ फौज में शामिल होगा। अलगरज करा बिन कैस खिदमत इमाम में आया, इमाम को सलाम किया और फिर उमर इब्न साद का पैगाम पहुंचाया कि आप यहां क्यों तशरीफ लाए। इमाम ने फरमाया तुम्हारे शहर वालों ने मुझे लिखा था कि मैं आऊं, अब अगर तुम मेरी आमद को नापसंद करते हो तो मैं वापस चला जाऊंगा। हुसैन अलैहिस्सलाम का जवाब वाज़ेह और सवाल के मुताबिक था। करा जवाब लेकर पलटा। हबीब ने मजाहिर ने खैमे से बाहर आकर करा को आवाज दी, करा जालिमों की जमात की तरफ कहां वापस जाते हो, उसकी मदद क्यों नहीं करते जिसके बुजुर्ग तुम्हारी और हमारी हिदायत का जरिया बने। करा ने जवाब दिया मैं पैगाम लेकर आया था, पहले इसका जवाब उमर इब्न साद तक पहुंचा दूं फिर गौर करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। चुनांचे करा ने जाकर पैगाम इब्न साद तक पहुंचाया और उसके बाद वापस आकर लश्कर हुसैन में शामिल हो गया और आखिर 10 मुहर्रम को शहादत के मनसब पर फायस हुआ। इमाम हुसैन के जवाब से उनकी अमन पसंदी और सुलहजुई वाजह थी। चुनांचे उमर इब्न साद ने फौरन इब्न ज़ियाद को खत लिखा कि हुसैन ने मेरे नुमाइंदे को बताया है कि वो इस मुल्क के लोगों की दावत पर यहाँ आए हैं, लेकिन अगर अब वो मेरा बार आना पसंद नहीं करते और उनके ख्यालात बदल गए हैं तो मैं जहां से आया हूं उधर ही वापस चला जाऊंगा। अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद ने खत देखकर जो रद्द अमल जाहिर किया उससे उसकी तारीखी कल्ब पर आखिरी मोहर लग गई। उसने कहा अब जब वो हमारे चंगल में आ गए हैं तो वो नजात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हरगिज नहीं, अब वो बचकर कहां जाएंगे। गोया सुलह اور امن کی کوئی صورت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔
0: وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ۔
2: یہ ہے ایف ایم 101، آپ کی سماعتوں کے سنگ۔ آپ سن رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات۔

0: 101 FM.
1: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101 आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

0: This is FM 101.1.
1: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले हम खबरों का खुलासा। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुजाकरात कल स्विट्जरलैंड में होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म कल मुनक्किद होने वाले इलाकाई वज़रा खारजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने आज कौमी असेंबली में बजट पर बहस समेटते हुए कहा है कि बजट का मकसद पायदार इक्तसादी तरक्की का हुसूल है। और साउथहैम्पटन में ख़वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया।
2: Saying you're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

ये मुझसे पूछिए क्या जुस्तजू में लज्जत है, फिजाए दहर में तहलील हो गया हूँ मैं, उड़ा हूँ जब तो फलक पर लिया है दम जाकर, जमीन को तोड़ गया हूँ जो रह गया हूँ मैं, जही है खाक के जर्रों में भी चमक मेरी, रही है खाक के जर्रों में भी चमक मेरी, कभी कभी तो सितारों से मिल गया हूँ मैं, हया तो मौत भी अदना सी कड़ी है मेरी, अजल से लेके अब तक वो सिलसिला हूँ मैं, मुझी को देख ले अब तेरे

सरे राह जब किसी ने मुझे दफ़वतन पुकारा, मुझे आ गया यकीन सा कि यही है मेरी मंजिल। सरे राह जब किसी ने मुझे दफ़वतन पुकारा, मैं बताऊं फर्क ना से जो है तुझ में और मुझ में।

अकल कहती है कि पीसी रो शकर, इश्क कहता है कि पी खूने जिगर, अकल कहती है कि पीसी रो शकर।

इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम, अकल कहती है के पी शीरो शकर, इश्क कहता है के पी खूने जिगर, अकल कहती है के माला माल हो, इश्क कहता है के पाए माल हो, अकल कहती है के तख्ते शाहनामा।

या कुछ सदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं। कुछ इस अदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं। ये मैं कदा है तेरा मदरसा नहीं वा।

सुबह शाम रोज पीता हूँ तेरी मद भरी आंखों का जाम, मैं कदे में जो गुजरती है अपनी सुबह शाम, रोज पीता हूँ तेरी मत भरी आंखों का जाम। शेख जी आपकी जन्नत से मुझे गर्ज नहीं, जामो

खाओ काजमैन खुरासान सामरा, बतलाए देता हूँ तुझे मैं खानों का पता, बताओ काजमैन खुरासान सामरा, साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं

0: पनाह गुजीनों के आलमी दिन पर कश्मीर मीडिया सर्विस की जश्न खुशा रिपोर्ट।
1: दिस इज एफएम
2: 101। सामिन, आप एफएम 101 से मुहर्रम उल हराम की खसूसी नशरियात सुन रहे हैं।
1: दिस इज एफएम
3: 101। तो जब भी बोल तू बोल रे बंदे पहले उनको तोल, जब भी बोल तू बोल रे बंदे पहले उनको तोल, क्योंकि वो बहुत अनमोल है लेकिन बोल ही खोले बोल बोल, अरे बोल ले।

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101, आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात.

सरे राह जब किसी ने मुझे दफ़तन पुकारा, मुझे आ गया यकीन सा कि यही है मेरी मंजिल। सरे राह जब किसी ने मुझे दफ़तन पुकारा,

इश्क बेचारा न मुल्ला है ना जाहिद ना हकीम, अकल कहती है के पी शीरो शकर, इश्क कहता है के पी खून है जिगर, अकल कहती है के माला माल हो, इश्क कहता है के पाए माल हो, अकल कहती है के तख्ते शाह ना मिले, इश्क कहता है के वीरा ना मिले, अकल कहती है के चल बाजार को, इश्क ले जाता है पूरे

करिश्मे दिखाए जाते हैं, मियां कुछ सदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं, कुछ सदा से करिश्मे दिखाए जाते हैं, अदा शनास भी धोखे में आए जाते हैं। ये मैं गधा है,

सुबह शाम रोज पीता हूँ तेरी मत भरी आंखों का जाम। मैं कदे में जो गुजरती है अपनी सुबह शाम रोज पीता हूँ तेरी मत भरी आंखों का जाम। शेख जी आपकी जन्नत से मुझे गर्ज नहीं जामो।

हैशर में जो है कौसर के धनी, उन काली कमलिया वालों से पीने का तरीका ए वाइस, जा पूछ अली के लालों से।

0: This is FM 101.
1: وصلى الله على نور.
2: ये है FM 101, आपकी समातों के संग. आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशरियात.